0: तेरा नाम अमर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान राव जित कट बस है पार ब्रह्म सोई सुहावा था जम तंकर नेड़ ना आवई रसना हर गुण का सेवा शुद्ध न जानिया ना जप है आराध ओठ तेरी जग गुरत उठे सब कुछ पाया जन नानक सत बलिहार तौड़ी महला पंजवा सूखे हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव
1: आई ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंसेस सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450
0: प्रभ कृपा दे भय सुहेले

निर्मल गुण गावो नित नीत, गई बयान उभरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना ध्याई।

देव परम गए पूरण पैसे रहा शीतला से रखिया बिहारी पात हम सब कृपा धारी नानक नाम जपै तो जीवे साध संग हर अमृत पीवे महला पंचमा फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे का सवारे रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे बात साह सब बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भव होए पलो भगवान साध संगत मिलके नो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक लोट पतरी प्रभ स्वामी गौरी महला पंचमा रात पिता प्रभ

कर कर हार्यो अनेक बहु पाती छोड़ कत होना ही एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया जीत ले ओए महाबिखारी सहज सोहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया।

ते भले संजोगा तब पानी सब सुबा किया गावो हो सुन हो पढ़ो नित पाई गुरपुरा पूरा किया रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत दयाला संता की पैज रखदा आया आद बिरद व्रत पाला पर अंड पुंचो सर पगेला मुख पाव चरम राणा अपना गुरु गोविंद नमः सुनी अरदास स्वामी मेरे।

ग्रहकारिणी कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृत्ति करी माता द्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभवता।

वत्सलोहं पाठे त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा इस्मातं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठति कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदम्।

गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं दरिद्र दुख हारिणीं सतां विभूति कारिणीं वियोग

विशुद्ध बुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विंध्यवासिन्यै नमः। स्तुतिपाठं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। विनय करे सदा।

0: बाखा सब हर करे सब काम सफल हनुमान।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपके लिए अभी फॉल का सीजन चल रहा है, तो फॉल में आपके लिए बड़े सुंदर, बहुत खूबसूरत वातावरण हो जाता है, स्पेशली नॉर्थ में। तो आपको अगर मौका मिलता है वहां जाने का और ऐसे दृश्य देखने का, तो आप जरूर ड्राइव की करके जाइएगा अप नॉर्थ एंड सी द ब्यूटी। तो आप जैसे हर साल मेरे साथ जरूर जाते होंगे, देखते होंगे, तो आपको बड़ा आनंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये तो साल में एक बार ही ऐसा मौका आपको मिलता है कि आप जाओ और देखो। अब आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया सी आपको बढ़िया बढ़िया आपको घर में सामान लेके आना है, तो आपको बढ़िया टीवी चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन गणेश उत्सव से आप जानते हैं कि शुरू हो जाता है, तो आपको बढ़िया बढ़िया सामान आपके घर में लेके आना है, सुंदर सुंदर चीजें अपने घर में लेके आनी है। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और उनकी दूसरी लोकेशन ग्वालपुर है। तो फेस्टिव सीजन से पहले पहले ही आप अपने घर में ये सारी चीजें ले आइएगा, बढ़िया सा टीवी ले आइएगा, और दिवाली के लिए अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया बढ़िया सामान बिल्कुल समय पे आपको जैसे आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आपके लिए घर संसार जो है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो आपके लिए अगर आपने फेस्टिव सीजन में अपना बिजनेस प्रमोट करना है, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647773। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आपको अपने ऑर्डर बुक करने हैं तो आप 905-799-0045 पर कॉल करो, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग, तो मूविंग के लिए अपनी सारी जो इतना सारा मूविंग कोई आसान चीज नहीं होती है, तो इसको आसान बनाते हैं आपके लिए एचके मूवर्स। तो आप एचके मूवर्स को आज ही कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने वाले हैं, तो आपके लिए अगर इलेक्शन में आपने वोटिंग, तो आपको अपना हक है तो आप जरूर वोट कीजिएगा। तो थॉरल में साद महमूद हैं, वो कौंसलर के रेस में आगे आए हैं, पर अपनी कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं, यहाँ पे न्यागरा आसपास के इलाके में तो खूब लोगों की सेवा करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन स्टैंड करता है बढ़िया, तो साध यहाँ से थोरल से हैं आपके लिए। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से साथ। अब अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए,

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने क्यू इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबी को मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया सामान लेना है, फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया रेट पे मिलता है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। तो अब आपके लिए योगी ऑटो सेंटर हैमिल्टन में मौजूद है।
2: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगी ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे। कहाँ पे? योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464। योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आपके लिए अगर आपने हैमिल्टन में रहते हो, आपने कार खरीदी है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विसेज हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए लोकेशन है। तो आपके लिए हैमिल्टन में आपने अगर गाड़ी खरीदी है, तो आपको बहुत बढ़िया गाड़ी आपके लिए वहाँ पे मिलेगी। पहले आपको गीत सुनाते हैं। So let's go to this beautiful song. आप अगर कोई गाना सुनना चाहते हो अपनी पसंद का, तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हो 647-773-7640 पे कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए ड्राइविंग, तो आप रोज करते हैं काम पे, हाँ जी। तो ये जो ड्राइविंग में क्या होता है जी, थोड़ी सी जगह, 2 इंच की जगह हो तो लोग आगे आपके घुस जाते हैं, तो उसमें जो आगे एकदम आके घुस जाते हैं, तो बाकी सभी जो पीछे लोग होते हैं उनकी टाइमिंग सारी वो खराब कर देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे देखा नियाग्रा फॉल में थॉरल स्टोन से जो है एग्जिट ना QEW में, जब आप टोरंटो में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो पीछे ट्रक आ रहे होते हैं, क्योंकि बॉर्डर है ना, तो लोग देखते नहीं या चेक नहीं करते हैं, इसलिए फिर बहुत सारी बड़े ध्यान से आपको लेन चेंज करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि मैंने खुद देखा कि एक शायद कोई थे, उनका उन्होंने चेक नहीं किया और ट्रक आ रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था ना, बहुत ही बढ़िया ट्रक ड्राइवर था, तो उसने क्या किया कि ट्रक को रोक लिया है ना, बहुत कोशिश की उसने रोकने की, फिर भी जो वैन वाले आगे थे, थोड़ी सी मैंने देखा कि थोड़ी सी उनकी जो वैन थी वो टच हो गई उनके साथ ना, तो इसलिए पता नहीं। अब कई बार मैं भी जब ऊपर वो QEW लेती हूँ, तो फिर ऐसे कई बार बड़ा ध्यान बिना देखे चलने की जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मिरर चेक करती हूँ, तो देखती हूँ कि पीछे ट्रक था, तो इसलिए आप बड़ा ध्यान से जब क्यू डब्ल्यू या किसी भी हाईवे पर

0: जी कैसा लगा इनको, तो बड़ी मस्ती है, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है जी, जरूर बताइएगा, क्योंकि बताने से ही पता चलता है। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है, या फिर आपने कोई बढ़िया सी आपके लिए टीवी चाहिए, किचन गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया फर्नीचर लेना है, सोफा सेट लेना है, तो आपको जाना है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक आप .com पर जाइए, तो फिर आपको वहाँ पे बढ़िया बढ़िया डील्स मिलेंगी, तो फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए। तो 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। और अगर आपने अभी तक आपका मूविंग होनी है, तो मूविंग के लिए अगर आपको मदद चाहिए, तो HK मूवर्स को आप आई कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए, तो आपके मूविंग की सारी प्रोसेस को उनकी ऐसे ऐसे टीम्स हैं, बढ़िया टीम्स हैं, वो आपकी सारी मूविंग को बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए। तो 416-524-804। अब अगर आप लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हो, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे, तो आप उनको mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी आप ले लो, तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सर्विस मिलेगी और बढ़िया आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही कहा मैंने आपको, तो आज ही आप उनका, अगर आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो वालों को इसकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आइए आपको बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।
1: अजूबे इस दुनिया में आज मैं अपनी जोड़ी, साथ अजूबे इस दुनिया में आज मैं अपनी जोड़ी।

जी हाँ, तो याद आ गई आपको फिल्म धर्मवीर धर्मेंद्र जी की फिल्म, बड़ी हिट मूवी थी, जीना तो मानते, जितेंद्र थे इसमें, तो कमाल की मूवी थी ये। अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिए। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रोकले फाटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लै के 1,00,000 डालर तक, ते फाइनेंस की चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.4.9% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड है तो ओह वी मिलणगे। चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੋਕਲੇ ਫਾਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840। ਬੀਬੀਟੀ ਰੋਕਲੇ ਫਾਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਲੰਡਨ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੇ ਲਿਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ कि अब आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में खुल चुके हैं गोर रोड पे। तो अगर आपने किसी किस्म का भी कोलिजन का करवाना तो डिपो पर जाइए और आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नया बनाते हैं। तो masterkollisiondepo.com पर जाइए और उनकी सेवाएं जरूर लीजिएगा। तो आइए आपको एक और बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको गाना पसंद आएगा।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है धर्म संसार में। अगर आप हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन द्वारा अपना लोकल कार डीलरशिप इतने ही है हैमिल्टन बिच। साढ़े को हर बजट लिए गड्डिया उपलब्ध हैं, सिर्फ 500-5000 तो लैके 1 लाख डॉलर तक। तो फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू। हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साढ़े को आओ, साड़ी लोकल टीम तुहाड़ी सिचुएशन के हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड़ है तो भी मिलणगे। चार टायर दा सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर। जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 से मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 की सीधी बचत। तो फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3340। दोबारा सुनो 365-384-3340। बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपको एक और ऐसे ही एक भूला बिसरा सा प्यारा सा गीत सुनाती हूँ आपको। जरूर मैं पक्का यकीन रखती हूँ आपको ये गाना पसंद आएगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद है ये गाना, आपको भी जरूर बहुत पसंद आएगा। सुनिए।
1: Right, please.

में कि अभी पितर पक्ष हो रहा है उसमें क्या होता है कि हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर एक पूर्वज का हर फली में अलग अलग दिन होता है, तो उस दिन हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं पूजा पाठ उनका धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो पूर्णिमा जो है खास पूर्णिमा है कि क्योंकि मून केक्स बनाए जाते हैं चाइनीज में, तो इसका ये जो पूर्णिमा होती है बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो नियाग्रा फॉल में खास करके इसका महत्व है कि बहुत सारे लोग यहाँ इस वीकेंड में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मून का व्यू है वो अलग होता है तो अच्छे से देता है। तभी जब वो डार्क टाइम हुआ था तो मिलियंस ऑफ लोग नियाग्रा फॉल आए थे उसको देखने के लिए। तो आइए अब हमारे प्रोग्राम का समय जो है तकरीबन की तरफ है, लेकिन रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाता पला है वंडरफुल डे। हरे सेफ वन राधा।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

जन्म जन्म के कलबे दुख उतारे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था

0: Dirty.ca.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ। तो सुनते रहे रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा। सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह की गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ। The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड इवनिंग, थोड़ा सब दा स्वागत है प्रोग्राम लेके। थोड़े लिए हाजिर हो गए हाँ, हर सैटरडे 5 बजे तो लेके 6 बजे तक हुंदा है थोड़ा ते साडा साथ रेडियो गोल्ड। कोई भी गलबात करना चाहते हो, माई नंबर इज 4169106000 और स्टूडियोज के नंबर है 4162337368। तुसी सारे जानते हो 2337368। What a beautiful day today, 23 degree temperature, 26 September, Saturday da khoob suraj ja din. Jandi jandi bahar sanu bilkul dikha ke ja rahi hai ki zindagi vich kade vi kuch vi ho sakda hai. Enne thand to baad ikdam enna khoob surat beautiful ja din aur I hope tusi sab ne is din nu enjoy kita hovega. Zindagi vich bahut sariyan problems aandiyan ne, lekin jekar tusi ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ

कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो बस जिद पर अड़ तो सही। जब सहना खुद को है तो बता कि तुम्हारा तमाशा क्यों करना इस बात का। लाइफ इज टू शॉर्ट एंड टू स्वीट एंड मेक इट टू स्वीट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी च प्रॉब्लम सब दे आती है। ये नहीं कि थोड़ी जिंदगी च प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरा बंदा बहुत खुश है, देखने विच बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम का मतलब है स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम का मतलब है ग्रोथ, प्रॉब्लम का मतलब है सक्सेस। हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन होता है। सो नोट वर्क ऑन प्रॉब्लम, वर्क ऑन सिचुएशन एंड सोल्यूशन। एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर एक प्यारा जहा खूबसूरत जहा गीत थोड़ी नज़र लेके असी हाजिर होवांगे। तुसी भी कोई गीत संगीत सुनना चाहते हो तो 416-233-7368 या फिर 416-910-6000 इज द नंबर टू कॉल। रियल एस्टेट की गलबात होएगी, मॉर्गेज की गलबात होएगी, डेट्स की गलबात होएगी और उस तो उपर एस्ट्रोलॉजी की गलबात होएगी। सो स्टे ट्यून, थोड़ा तो साढ़ा साथ 5 to 6 PM तक रेडियो गोल्ड। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

आई कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें। तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है। आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232 Clear Optical by Varun Kanda।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।
5: Once again, welcome to the program. ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 90s ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਆ, ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਐਂਡ ਭਾਗਿਸ਼੍ਰੀ, ਉਸੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਐਸ ਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮ ਮਨੀਅਮ ਐਂਡ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਕੋ ਔਨ ਕਰ ਲੇ तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी इस प्रोग्राम में। 416-233-7368 स्टूडियोज़ के नंबर हैं और 416-910-6000 इज़।

जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट में स्वागत है आपका। अगर आपको लग रहा है कि टोरंटो का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बस गिर रहा है तो जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी थोड़ी बदल रही है। अगस्त में जीटीए में करीब 5,057 होम्स सोल्ड हुए, जबकि नई लिस्टिंग्स पिछले साल की तुलना में लगभग 14% कम रही। एवरेज सेलिंग प्राइस करीब 993,000 रहा, लेकिन यहाँ आता है हिडन फैक्ट। कम सेल्स का मतलब हमेशा कम डिमांड नहीं होता। कभी कभी बायर्स इसलिए भी नहीं खरीद रहे होते क्योंकि उन्हें मार्केट में अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही होती। मतलब आज की कहानी सिर्फ प्राइस ही नहीं, इन्वेंट्री की भी है, और बायर्स के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगस्त में सिर्फ 12,075 न्यू लिस्टिंग्स आई, जो पिछले साल की तुलना में 14.1% कम लिस्टिंग्स है। हिडन फैक्ट में कम सेल्स का मतलब हमेशा कमजोर मार्केट नहीं होता। अगर मार्केट में प्रॉपर्टीज ही कम आ रही हैं, तो बायर्स के पास चॉइसेस कम होती हैं और कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पर कंपटीशन वापस आ सकता है, और यही अगस्त में दिखाई दिया। ट्रेप का बेंचमार्क प्राइस साल दर साल 4.5% नीचे था, लेकिन मंथ ओवर मंथ बेसिस पर बेंचमार्क लगभग फ्लैट रहा, और आज का मार्केट पूरे जीटीए में एक जैसा नहीं है। एक तरफ कुछ सेगमेंट्स, खासकर कॉन्डो, अभी भी प्रेशर में है। बैंक ऑफ कनाडा ने भी टोरंटो कॉन्डो मार्केट में इन्वेस्टर डिमांड और पॉपुलेशन ग्रोथ के बदलते डायनामिक्स को महत्वपूर्ण फैक्टर बताया है। लेकिन दूसरी तरफ लो इन्वेंट्री वाले नेबरहुड्स में अच्छी प्रॉपर्टीज का कंपटीशन असल कहानी बता सकता है। इसलिए ये कहना कि मार्केट डाउन है या अब मार्केट रिकवर कर रहा है, दोनों ही दो अधूरी तस्वीरें हो सकती हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपने पॉलिसी रेट को 2.25% पर अनचेंज रखा था। साथ ही बैंक ने बताया कि कनेडियन इकोनॉमी ने सेकेंड क्वार्टर में 3.3% ग्रोथ दिखाई, लेकिन इन्फ्लेशन और ट्रेड अनसर्टेनिटी अभी भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब बायर के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना काफी नहीं है, उन्हें देखना चाहिए प्राइस प्लस मॉर्गेज पेमेंट प्लस इन्वेंट्री प्लस लोकेशन प्लस प्रॉपर्टी टाइप। इन पांचों को साथ रख कर ही पिक्चर साफ होती है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई बायर कहता है मैं प्राइस और नीचे आने का इंतजार करूंगा, तो सवाल ये होना चाहिए कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे आया भी तो उस समय अच्छी प्रॉपर्टीज की सप्लाई भी कम होगी और कंपटीशन बढ़ गया तो आप क्या करोगे। यही है आज की जीटीए मार्केट का हिडन गेम। प्राइसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चॉइस। जीटीए की तस्वीर यही है। मार्केट ना पूरी तरह बायर्स मार्केट की कहानी कहती है, ना सेलर्स मार्केट की। ये एक सेलेक्टिव मार्केट है जहां सही प्रॉपर्टी और सही प्राइसिंग बहुत मायने रखता है। सुनते रहें रेडियो गोल्ड। शुक्रिया।

चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं, और हर सितारा एक कहानी कहता है, और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए।

0: views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: अपने घर मुड़ आते ने
2: शिफ्टां ते जद वतना तो दूर याद अपने फेर तो आंदे ने
1: कोई है जो करदा है तुहाडी मां बोली विच तुहाडे दिल दिया गल्ला
2: पंजाबी गीता नाल रौनका लगा के तुहाडे कम दिया गल्ला
1: वखरा टंग वखरा रंग
2: रेडियो जीदा वखरा अंदाज
1: सुचज्जी जीवन शैली दी गल करता तुहाडा अपना रेडियो रेडियो अंदाज सुनो अपनी होस्ट परम कौर दिना नंबर टू कॉल 647-234-6000

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफिल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो तुहाडा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज तुहाडी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वल्लों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत

0: हां जी हरमन जी।
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी।
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर केदे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना कि सबन।
0: मैं तां रंग दी गल करदा वी भाई चंगा साबण वरत्या करो। माड़े साबण ना रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हां जी।
1: अच्छा जी ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हां जी
1: हां जी
0: हां जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनाउनी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दीआं नीतियां ना।
0: बादल सरकार दीआं नीतियां पहिलां मैनूं ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है।
1: देखो उहनां ने
0: समझाओ ना पहिलां।
1: की समझावां
0: भाई साडे पल्ले तां पाओ। केड़िया नीतियां ने
1: उन्होंने जो क्या है पहला वो गल तो सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल तो दसो भी नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: मशहूरी
0: करानी है।
1: क्यों?
0: वो इस करके कहते पंजाब च पानी तो थले चली गई।
1: अच्छा
0: नलके पानी कढ़ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਫੇਸ ਨਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ ਜੀ।

0: सकदा कोई रीज
1: कल्चर ऑफ पंजाब
0: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट की वो बोल दी तस्वीर एशियन कम्युनिटी का मन पसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब
2: तेजी नाल बज रहे रेडियो शो जिसको